0: सबसे पहले तो शुक्रिया, शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए
1: कुछ न कुछ सोच रहा, एक ही ख्याल आ रहा है।